0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-20-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: अगर कोई पूछे मेरी सुबह की वजह क्या है, मेरी शाम का सुकून क्या है, मेरी खामोशी में कौन रहता है, तो शायद बहुत लंबा जवाब नहीं होगा, बस एक नाम है।

कहने को बहुत कुछ था, मगर दिल ने फिर सब आसान कर दिया एक शब्द में पूरी बात।